वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू साहिब जीओ। हर जुग जुग भगते उपाया

प्यारे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सोने सतगुरु जी दे चरणा च सज बैठियां सतगुर प्यारे जी नू प्यार करन वालियां प्रेम वालियां

भले ही सो निहाल। इस तो उपरांत आप जी नूं गुरबाणी की तरह निहाल करनगे साढ़े बड़े सत्कार योग भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले। एक दो जरूरी बेनतियां, आपने वार स्क्रीन ते देखा ही होगा ACLU अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जिहड़ी कि यह वो संस्था है जिसने जदों 94-95 दे विच साठी सिख कौम नूं कृपान पहनण ते पाबंदी लाउण दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं, इह संस्था ने साडा जो सहयोग दित्ता वह साडे कोल इस हफ्ते जाणी संडे नूं टेबल बार लगा रहे ने। उस संस्था लई जे किसी ने अपनी डोनेशन देनी होवे तां जो चैक है उस नूं भी पेड टू दी ऑर्डर ऑफ ACLU करके आप डोनेट कर सकते हो। इन्हां ने उस टाइम साडी बहुत वड्डी मदद कीती है। साडा भी फर्ज बनता है कि जो उस टाइम हालात बने इन्हां ने वध चढ़ के साडा सिखां दा साथ दिता। साडा भी फर्ज बनता है कि आपां अपने दसवंध विच्चों इस संस्था दा वध चढ़ के एक माण करिए। इन्नी क बेनती प्रवान करनी। नाल ही जो साडा धन धन बाबा शेख फरीद साहब जी के आगमन पुरब न समर्पित सालाना प्रोग्राम फरीदकोट दियां संगतां वल्लों गुरदा साहब प्रोग्राम किया जाता है वह इस हफ्ते 18 सितंबर तो लैके 20 सितंबर तक हो जा रहा है। दिन शुक्रवार को धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रब्बी बाणी के अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे, जिन्हों के भोग दिन ऐतवार को सवेरे पैणगे। इस तरह ही दिन सैचरडे वाले दिन शाम को 8:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक सिमरन होगा। सो आप सब को निम्रता सहित बेनती है कि आप इन्हां प्रोग्रामां विच अपने परिवारां समेत वध तो वध हाजरियां लगवाओ। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ हुण साडे बड़े सत्कारयोग भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब वालियां पासों गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आय, जिह जिथे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया कार नाव ने दयावे ताए, सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके भुलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी।

La panema salok ad gurai namah jugad gurai namah sat gurai namah sri gurudevaye namah ashtapadi simrao simar simar sukh paavo kal kalesh tan mahe mitavo सिमराउ जास विश्वंभर एक नाम जपत अगनत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधा खियर किन्ने राम नाम किया खियर

हंतत बुद्ध प्रभु कह सिमरन जपता पूजा प्रभु कह सिमरन बिंसा दूजा प्रभु कह सिमरन तीर्थ शरानी प्रभु कह सिमरन दरगह मानी प्रभु कह सिमरन हो सो भला प्रभु कह सिमरन सफल फला से सिमरे जन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु कह सिमरन सबते उच्चा प्रभु कह सिमरन उदरय मुचा प्रभु कह सिमरन त्रिशुना बुझा प्रभु कह सिमरन सबके सुजा प्रभु कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कह सिमरन वन की मल जाहे अमृत नाम अमृत माहे समाए प्रभु जी बसें साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु गो सिमरे से धन बनते प्रभु गो सिमरे से पत बनते प्रभु को सिमरे से जान प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बैमो ताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा बिनासी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पारुपकारी प्रभु को सिमरे तन सदबलहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावा

करे भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नान गुरमुख नाम जपिया एक बार। नाव खंड पृथ्वी फिरा चर जीव उदास, पीसर थी वह अग्न माय होमत प्राण। कनक सब है भूम दान, नवली कर्म करे भव आसन, जैन मार्ग संयमत साधन।

संगे हो मैं छोर है जे को जन्म मरण ते डरा साध जना की सरणी पर आय जिजन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सकल पुरख में पुरख प्रदान सासंग जाका मिटे अभिमान आपस कहो जो जाने नीचा सऊ गनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम दिन घटगट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन्य लेपा निर्धन को धन देरो नाम ने थामे को ना हूं तेरा थाऊ निमाने को प्रभु देरो मान सकल कटा गो देवो दान करण ग्रामन हार स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबरना जानस गोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जासुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जेह कट वस हर नाम सलोक निर्गुणी आहार ए आने सो प्रभ सदा समार जिन किया तिसीत रख नानक निबिहीना लष्टपति रमैया के गुण चेत परानी कमन मूलते कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन में जने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बृद भयो प्रसाक सैन मुख प्याओ बैठ कऊ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श लिया तव नानक सी जाय जे प्रसाद धर पर सुख बसे सुत भरात मीत बनता संघ हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जरा सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड अंध व्यापे नानक लियो प्रव्यापे आदंत जुराखन हार तिस्यो प्रीत न करा अगवार जाकी सेवा नमन पावे दासो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर स सदा हजूरे तागो अंधा जान दूरे जाके टहल पावे द्रगे मांद से बिसारे मुग्ध अजान सदा सदाए भुलन हार नानक राखन हार अपार अतंत्या कौटी संग रचय सा छोड़ झूठ संग बचाए जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो हमन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरा चंदन लेप उतारे तोहे घर ता प्रीत भस्म संग होए अंधगुप में पतित विकराल नानक लियो प्रभु दयाल क्रूत पशु की मानस जात रोग बचारा करे दिन रात बाहर भेग अंतर मल माया शब सुनाहे कश करे शपाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापे लोभ समान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरा अथाह जाके अंदर बसे प्रभु आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निबहावे कहाँ बुझ हर्त बुझे डोरा निस्क

अष्टपदी दस वस्तु लय पाछे पावे एक वस्तु कार्मिकोड गवावे एक पीना दे दसवी हिर लय तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताके जिस ठाकुर से नाही चारा।

ब्रह्मज्ञानिका गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी पर्वकारो महाब्रह्मज्ञानिका नाही तंधा ब्रह्मज्ञान लेताब्दबंधा ब्रह्मज्ञानिका वैसो बला ब्रह्मज्ञानी सफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जप सकल संसार ब्रह्मज्ञानिका एकारंग ब्रह्मज्ञानिका भाषा प्रभु संग ब्रह्मज्ञानिका राम आधार ब्रह्मज्ञानिका राम प्रवार

क्या नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का द्वर्ष बट पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नारक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का गौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा खेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की

दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी भरि नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी स्वरूप और तारे जवंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक अपारस सगल निसतार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना बरस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार्थर रूप न वेख रेतर साध की टहल संसंगेत करना सुने गाहू की निंदा सबते जाने आवश्यक मंदा गुरु प्रसाद विखे पर हरा मन की बासना मंत्र ठरा इंद्री जित पंच दुखते रहत नानकूट मदे गुसा अपरस वैष्णो सो जिस सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करतो वे ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउफल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राच बंतर अंतर सिमरण गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ अपने नाम जपावे नानक वैष्णो परमगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंत्र बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम हो भय भगवंत की टहल करै नितनीत मंत्र अरपाय बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो

प्रभु की आज्ञा आत्महतावे जीवन मुक्त सब कहावे तैसाग तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक प्रकिये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊं जीत जीत कर राखे तैसा तिन्नाऊं।

संगा दुखी सदा अपवेत संगा दुखी किसे का नहीं मित संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी महंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जन्माय मरे संगी दुखना सुख दे ठराय संगे दुखी को नाही ठाहू नानक सन भावे तलय मिलाये संगा दुखी अद बीते टूटा है संगा दुखी किते गाज ना पहुंचाए संगे दुखी को ध्यान भरमाइए संगा दुखी उजड़ पाई है संगा दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किशना है आपन बीजा पे ही खाहे संगे दुखी का वरना रख नहार नानक संत भावे तलय उबहर संगा दुखी आऊं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़ फटाए संगा दुखी भूखा नहीं राज जो पाव इंद्र नहीं तरप है संगा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुबेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सदमथया कहत कीर्तन नंदक का तुर ही पया नानक ज्योत भावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पय जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सह का संगा दुखी जा बरे ना जीवाई है संगे दुखी की पूजना सा संगा दुखी उठ चले निराशा संगे दुख ना दृष्टा गोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा गोये नानक जाने सच्चा जो सब करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से त्यावो सात गिरा सब कुछ भरत है तुझका कीजा जैसा करे तैसा को थीजा अपना के लाभ करने हार दूसर गाउन कह विचार जिसनू कृपा करे तो सप नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक

अष्टपदी मानु कीट एक ब्रिथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अगाए बरना दर्शन लागे आए मारे राखे एक मानु के शनाई हाथ जिसका हुक्म सुख हुए जिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोए

हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार से तरबंध करी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या। गुरु प्रसाद अपने आप सुजे जिसकी जानो, तृष्णा बुझे सा संग हर हर जस गायत। सर्वलोक ते हर जन रह तन दिन कीर्तन।

जिस गौर ब्रह्म मंच थे आवे सुसंसु इला नहीं डुलावे, जिस पर अपना कृपा करे सो सेवकों किसते डराए, जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोद सिज्या, गुरुप्रसाद तत्सव बुझा, जब देखो तब सब कुछ मूल, नारक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्मे न कि मरे आपन, चलते आप ही करे आवन, जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट अपे आप, सकल में आप आनक जुगत रज था भूथाप, अविनाशी नाय कृष्ण खंड, धारण धार्यो ब्रह्मांड, अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता।

निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन कर्ण आगने मन संतोखातम पति अन्य पूरा गुरु खेव जाका मंत्र अमृत खेव संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव दस रहे मिलाए जे एक उस्तत अरेक सतपुरख पूर्ण विवेक काह बोलना पहुचत प्राणी आगम आगोचर प्राप निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भगत बंधन करह चरण कमल हृदय सिमरे सदबल हारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा

हरे अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तहते नाशे तपतमाए ठांड बरताई अनंत बै दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटिया देसे साधु के पूर्ण देसे भाव चुका निर्भव होए बसे सगल ब्याद बनते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी सा संग जप नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आव सरगुण भी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही गोए सर्व निरंतर एको सोए ओत बोध रभ्या रूप रंग भय प्रगा साध गया संग रच रचना अपनी गलतारी

अनुसार अष्टपदी संजनाम करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत विसारो शरण कमल हृदय में उतारो करण कान सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम अरवथ ए तन संजो व भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो हर तन सेवा ते पावे जिसको रद भाषे बीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परी करणी सा शोभा बजहर की सरणी अनुग बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान मेर नाम निधान जप नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर कह राय दैत स्थापित आवठा।

और अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सुभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो आपन सो सब जगत परोहे जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुसको ना मार है सो मुआ जिस मनो विसार है तिस्त जबर कां को जाय उबरे सबसे तिस्त जबर कां को जाय सबसे एक निरंजन राय।

में जाए। तिस्ते दुर्गा को जाय बरे राखना आरत्याय निर्भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा दे प्राणी छुटाए। जिस पर राखे तिस नाही दुख नाम जपत मनो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार। तिजन को कोई ना पाव चनार सिर पर ठाडा गुरु सूरा नानक जाके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन वसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल। अमर भय अमर आवत पाया सा संग नानक हर ध्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अधेर विनाश। हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश। अष्टपति संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समेगरी एक घट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे। नाओ निध अमृत प्रभु का नाम देहि में सगा विश्राम।

दूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरो, हर धन के भर लिहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सासंग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो।

जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुने आए सिद्ध पीर सुरनाथ सुने आए धरत

निरंकार असंख मूर खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सरनाहे जे फरमाए तिव तिव पाए जेता कीता तेता ना हो विण ना वह ना ही को थाऊ

एक वे एक दो जीव लाख हो है लाख हो वे लाख वीस लाख लाख गेड़ा आख यह एक नाम जगदीश इतरा है पद पवड़िया चढ़िए होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

के अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आव सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पावे निशान।

सार, नानक कथना करढ़ा सार, जात पहारा तीज सुनियार, आहरन मात वेद हथियार, पाओ खलागन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित टहल,

है, के सर्वं कली है, के सर्वं धली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पहुन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र

निरुक्त स्वरूप है, तिरमुक्त विपुक्त है, परपुक्त प्रभा है, स्वजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समाहतोपराज है, सदा सर्वसाज है।

कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो नहात फिरयो लिये सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो।

आयो को बतान को पूजित है पास को मृतान को पूजनता आयो कूर कर आवर ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।

जबन काल सब लोग सुमारा नमस्कार है ताहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो देव दैद जछने उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजने आप सुवारी। शिवकुन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो भद कियो। घट कर के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछांत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाने कर करके पर पड़ की जाने। जब उदकर करा कृतार पर जा तरत तब देह अपार। जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तहारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम स

भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत न है पेव, आप अपनी बुद्ध है देती, वर्णत पहन पहन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाय पसार, के विद सजा प्रथम संसार, एक रूप स्वरूपा रंग पहो राव कहीं भूपा।

प्रसाद स्वरूप स्याम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारिया सिख संग्रह दुहट जिते उठवते उत्पाता सकल मिले करो रन कहता जे आज तो तब सरनी परे तनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट हरिष्ट टरें तत्काला

तह नर के रह हो जो जा की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबद सत्रह सहस परिजय अर्ध सहस फवन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रमवार तीर तद्रव ग्रंथ सुधार सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कुआह तरह नहीं राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमृत सातर वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूं सब तो हे बखान्यो धोहरा

कीरत तत बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा

कुमार की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वस, संत प्रताप दुर्त सब नस। संत का संग वड़ भागी पाई, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तोल कछ्य वरना होए नानक।

कर करम तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिण सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम तो सो आज्ञाकारी।

रोस कराए। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस से आगे राखे प्रभु की आज्ञा, माने माथे उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहब सदा दयाल, अनक पात माया के हेत। सर पुरोवत जाने अनेत, बिरख की छाया स्यो रंग लावे। हो बिन से हो मन पशु तावे, जो दिसे सो चालन हार। लपट रहो ते आंधे अंधार, बटाऊ सो जो लावे नेह। तांको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुख दाई। कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटंब सुभाया। मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राजो बन धन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या राथस्ती अशुभ वस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता, मिथ्या ध्रुव मो अभिमान। मिथ्या आपसी उपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण। नानक जाप जाप जीवे अर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुने, मिथ्या अस्त पर दर्भ कोहिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरह रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद। मिथ्या चरण पर बेकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब है, सबल दे नानक कर नाम लय। बिरथी सागत

तिस का ध्यान। जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जय प्रसाद करने करे सुनन नाद, जय प्रसाद सुने करन नाद। जय प्रसाद पेखे बिस्माद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चलै। जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परम गत पावे। जय प्रसाद सो सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो। गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार। तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप। रे मन मूड तू तांको जाप, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे। तिसे जान मन सदा हजूरे, जय प्रसाद तू पावे साच। रे मन मेरे तू तां स्यों राच, जय प्रसाद सबकी गा तोए। नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपे सुनाहु। आप गुवाए स्वर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते हुए प्रगास। प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए। प्रभु दया ते मति उत्तम होए, सरबन दान प्रभु तेरी मैं आप। कछु न किन्हु लया, जित जित लावो तित लगे अरनाथ।

साधक संग सदा पर फुल है, साधक संग आवे बस पंचा, सा संग अमृत रस पुंचा, सा संग सब की रे नव, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कतु तावै, साधुक संग सदा सुख पावै, साधुक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, सा संग दुश्मन स

साधु की महिमा वेदना जाने जेता सुने ते तब खयाने साधक उपमा ते गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साधक शोभा का नाही अंत साधक शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उजते ऊंची साध की शोभा मूजते मूची साध की शोभा साध बने आई ना।

नाम जो जप जो जो जपे तिसकी गातो है सत्संग पावे जन कोय। कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का खुद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम।

तैसी भेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक्यो पुरख कहिए जीवन मुगत, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखे तैसा।

नानक तिस बलहार न जल थल मही अल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग ज्योत सुभावे सोई हो किन में थाप्यो थापनारा अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार अदर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सामे रिया समाई। प्रभ भावे मानुख गत पावे प्रभ भावे ता पाथर तुरावे। प्रभ भावे बिनसा ते राखे प्रभ भावे तार गुण भाखे। प्रभ भावे

कबू सो गहर खरंग हसै कबू निंद चिंद विहार कबू बकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावनहार कबू नृत करे बपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की ओतर वाल कबू है वै बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कुहावे ज्यों प्रभु राखे तिवी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखयान कबू मुन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट पतंग हस्त कबू कीट हस्त पतंग जिया अनक जून भरमे भरमैया नाना रूप ज्यो सुहागी दुख आवे ज्यो प्रभावे तवे नचावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए कबू साध संगत हो पावे उस स्थान ते बौरण आवे अंतर होए ज्ञान प्रगा

न जावे। भव लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर तांका ए बनास, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाय पसमंत, किसी न बदे आप अंकारी, तरम राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जांका मिटी अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। कोड़ कर्म करे हो तारे, शर्म पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे कौ कैसे गवे, आपसको जो भला कावे तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेण जांका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जाबे जाने मैं किछ करता, तबला गर्भ जोड़ मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत, जब लग मोह भगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सुजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक छूटै, सहस खटे लख कोठ धावै, त्रिवत नावे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करै नै, त्रिवतावे खप खप मरे बिना संतोग नहीं, को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करन करावने आपे आप, सदा सदा नान कर जाप, करन करावन करने हार, इसके याद काम विचार, जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै सांग,

बहुर्भौरअवतार राष्ट्रपति संत कै दुखन यार जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा तीन संत कै अते को रखै ना कोई।

संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी ए कोए एक एक पछाने तुद कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक ने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजाए तिसकी जानो तृष्णा बुझाए सात संग हर जस कैत सर्व रोग त्यो हर जन रैत अणदन कीर्तन केवल बुखयान।

रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगत आत्म कह चाये प्रभ अपने स्यो रह समाये जो वावत सो जाने प्रभ अपने का खुम पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण का एक न जानो आड़ पैर प्रभ से अजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी सरन सर्व सुख पावे तिसके दरसा पा मिटावे अवर से आण सगली छाड़ ते जन की तू सेवा लागा मन जान ना हो भी तेरा नानक ते जन के पूजो सद पैरा सलोक सात पुरख जिन जाने सत गुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपरी सात गुर सेकी करे प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत माल हिराय गुर बचनी अर नाम उचराय सतगुर सेके बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सेको नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुरु से गलत बलत सवारे नानक सतगुर से को जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ ना जुनावे हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा कर तो इन कामी तिसको उत्प्राप स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानु सो सेवक गुर की मत ले भीष विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सतगुर जिस हृदय अरनाव अनकुबार गुर को बल जाओ सर्वण दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सह सियाण पलया न जाइये नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है सफल दर्शन अपेखत पनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेड़त सांग राम गुण रवे पार ब्रह्म की धरगे गवे सुनकर बचन करने अकाने मन संतोखा तुम पति आने पूरा गोरे अखयो जांका मंत्र अमृत दृढ़ पेखे होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव है तिस लय मलाये जिहवाय कुस्त ते अनेक सतपुरख पूर्ण बाबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगमय गोचर प्रभ निर्वाण निंद्राहार निर्वैर सुखदाई ता की कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कराय चरण कमल हृदय सिमरे सद बुलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवै

अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तैते नासे तपत मैं ठांड वरताई अंत भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चूका नृपय बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी सत्संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भरम गवन सुन नानकार हर जा सरवण निर्गुण आव सरगुण पियोई कला धार जन सगली मोही अपने चरत प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर।

हम निर्गुणियार नीतिया जान, नानक तुमरी सरन पुरुख भगवान, सर वैकुंठ मुक्त मुख पायक निम करके गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई, अरके नाम की कथा मन पाई, भव भोजन का पर संगीत रसना जपती, अर अरणीत भली सो करणी शोभा, तनवन तिर दे बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ दे सर्व सुख नानक प्रगा। श्लोक सार

संजना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सब बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो है सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभ।

करके आजत वह सर्व संभाले। वज तेरे नाद अनेक संख्या केते तेरे बावन हरे। केते तेरे राग परिस्यो कही है केते तेरे गावन हरे। गावन तुदनो पवन पाणी वह संतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लेख जाणन लेख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवत्या दरनाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जते सते।

मुनियामर मोहन सुर्ग मच पयाल गावंत नो रतन उपाय तेरे अर्थर तीर्थ नाले गावंत नो जोत महाबल सूरा गावंत नो खाणी चारे गावंत नो खांड मंडल ब्राह्मंड कर कर रखे तेरे तारे से तदनो गावन ज्योत पावन रचे तेरे भगत रसाले होर कहते दोनों गावन से मैं चेतन आवन नानकिया बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है पियो सीधा न जसी रचना जिन रचाई रंगे रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा किता अपना ज्योत दी वड्याई ज्योत पावे सोई करसी हु फिर हुक्म न करना जाई सो पाठसा साहब साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखा सब कोए केवड वड्डा डिठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गैर गंभीरा गुण गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा राहाओ सब सुरते मर सुरत कमाई सब कीमत मर कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहण न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंग्याईया सिद्धा पुरखा क्या वड्याईया तुदवन सदीक ने ना पाईया करम ले ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिवती परे तेरे भंडारा जिस तू दे तुसे क्या चारा नानक सच सुवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उदभुखे खाए चलिया दुख सो कौ विसरा मेरी माए सचा साहेब सचा नाए रहाओ साचे नाम के दिल वड्याई आख थका कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए ना

रात जिन दिन करके कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नामे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के दिन सतगुरु साह पुरख बिनो करो गुरु पास हम कीरे करम सतगुरु सरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मुको राम नाम प्रगास गुरमत नामरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिला त्रिवतास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीव है त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तन धर्म सग लिखिया लेखास तन तन सत संग जतर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजमा कायरे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जी हो पर आओ सैल पत्थर में जंतु पाए ता खारज को आगे कर तरिया मेरे माधो जे सत संगत मिले सो तरिया गुरप्रसाद परम बद पाया सुखे का सरिया रहाओ जनन बिता लो सत बनिता कोई न किस की तरिया सिर सिर जग समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उड़ उड़िया बस कौसात पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलाब है कवन चुगावाए मन में सिमरन करिया सब निधान दासिया सुसदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बलबत सबल जाइया तेरे अंत न पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सावते आवै सावते आवै तो जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नाने जंत विचारा तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाणा एक दाते एक पे खारे जी सब तेरे चोज मिनाणा।

राघव खाना जो सेव है जो सेव है तो जी जन नाने तन कुरबाना आरती आवे तो जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जन हरत्या जी तन टूटे जम की फासी जन नरपौ जन हर नरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी

जय कर किरत आखिए करते काहे बिचारो तिद कर गाव सोहेला सिवरियो सिर दिन हारो तुम गाव मेरे निर्भव का सोहेला अर्ज सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नजेड़ संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवाए ते दाते कमण सुमार संभसा लिखिया मिल कृपा बहतेल देव सजन सिसड़िया जो वै साहेब स्यो मेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सजन हारा सिमरिय नानक से दे आवन रागा सा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जैकर करते किरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्व चसिया कड़िया पैरा तिथि वारी मा हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वायंत पेरी रहा सहतव नन्ना नैन है तो एको सहस मूर्त नन्ना एक तो ही सहस पद विमन नायक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही समय जो जोत है सोए तिसद चानन समय चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत भाव है सो आरती होए हर चरण कलम करंद लोभत मनो अंदनो मोयाही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया मनल मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पन वड्डा है कर डंडौत पन वड्डा है राहो साकत रस साधना जानिया तिन अंतरों में कंडा है ज्यो ज्यो चला चुभै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर नाम समाणे जुग जन मरण पव खंडा है अविनाशी प्रगपाया परमेश्वर बहु सोव खंड ब्रह्म।

सब वाव मत देख भूला विसरैत रचत नय आवै नाउ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ चंद सूरद गुफै न देखा सुपनै सौण ना थाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े अखा नाओ साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखणा जे भावै करै तमाए राओ कुसा कटिया वार वार पीसण पीसा पाए अगे सेती जालिए पसम सेती रल जाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े आखा नाओ पंखी होए के जे पवा सह सुमानी जाओ नदरी किसे ना आवो ना किस पिया ना खाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े आखा नाओ नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचै पाओ मसू तोट ना आवे लेखन पौन चलाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़े आखा नाओ श्री राग महला पहला लेखे बोलन बोलना लेखे खाना खाओ लेखे बाट चलाइए लेखे सुन वे खाओ लेखे साल वाइए पढ़ के पूछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे ना विसारिया ना तिस एह ना ओ हो राओ जीवन मरना जाय कै थे खा जा काल जिथे वै समझाइए तिथे कोय ना चलियो नाल रोबण वाले जितरे साबन पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत घटना आखे कोय कीमत किरना पाया कहन वड्डा होए साचा साहब एक तू होर जिया केते लो नीचा अंदर नीच जात नीची हूं आत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्यारीस जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बखशीस श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख सुद्धि अगन क्रोध चंडाल रस का सुप सलाना ए करम मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहो रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै घट नाम निवास जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया परवान फिका बोल वे गूचना सुन मूर्ख मान्या जान जो तुझ भाव ऐसे भले होर के कहन वखाण तिन मत तिन पत तिन धन पल जिन हिरदे रहा समाए तिनका क्या सलाहना वर सवाले ओकाए नानक नदरी बाहरे रचे दान ना नाए श्री राग महला पहला अमल गुलोला कूड़का दिता देवनहार मती मन विसारिया खुशी किती दिन चार सच मिलिया तना सोफिया राखण कौ दरबार नानी सच कौ सच जान जित सेवया सुख पाइए तेरी दरगा चले मान रहो सच सरा गुड़ बाहरा जिस वे सचा नाओ सुने वखाने जितड़े हो तिन बलिहार जाओ ता मन खीवा जानिया जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आईया सर प्रमल तनवास ताम खो वै उजला लख दाती एक दात दुख तिस पे आखिए सुख जिसे ही पास सो कमर विसारिये जा कै जी प्राण तिस विण सब पितर है जिता पैरन खान होर गल्ला सब कुड़िया तुद भाव है परवान श्री राग महला पहला जाल मोकस मस कर मत कागद कर सार पाओ कलम कर चित लिखारी गुरु पुछ लिख बीचार लिख नाम सलाह लिख लिख अंत न पारा वार बाबा यो लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगिए तिथे हो सचा निशान रहो जिथे मिले वड्याईया सद खुशियां सद चाओ
तेन मुखट कह निकले जन मन सचा नाओ करम ले चा पाइये ना ही गली वाओ दुआओ एक आव एक जाहे उठ रखे नाम सलार एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार अगे गया जानिए वृंदावे बेकार पै तेरा डर अगला खब खब छिजै दे नाम जना सुल्तान खान हुंदे डिठे खे नानक उठे चलिया सब कूड़े टुटे ने श्री राग महला पहला सब रस मिठे मन्या सुनिया सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छत्ती अमृत भाओ एक जाको नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़िए मन में चले बेकार रहो रत्ता पैन मन रत्ता सो पैदी सत दान नीली स्याई कदा करनी पैरन पैर ध्यान कमर बन संतो का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैन खुशी खुआर जित पैदे तन पीड़िए मन में चले बेकार रहो घोड़े पाखर सोए ने साखत बूजन तेरी वाट तरखस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा ने जा परसों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िया तन पीड़िए मन में चले बेकार रहो कर्म दर खुशी नाम की नजर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भापसी हो आखण बहुत अपार नानी सच्चा पात साहु पूछना करे बीचार बाबा होर सोना खुशी खुआर जित सुत तन पीड़िए मन में चले बेकार रहो श्री राग महला पहला कुंगो की काया रत्ना की ललता अग्रवास तन सास अठ सठ तीर्थ का मुख टिका तित कट मत विगास ओत मति सलाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर होर जेसो वेर कमाइए कूड़े कूड़ा जोर रहो पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार नाओ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जां पत लिखे ना पवे सबा पूज खुआर जिनको सतगुरु थापिया तन मेट ना सकै कोय उन्हें अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए खेहू खेर लाइए तां जियो केहा होए जलिया सब सियाणपा उठी चलिया रोए नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए श्री राग महला पहला गुणवंती गुण वितराया गुणवंती चूर जे लोड़ा वर कामणी ने मिलिए परकूर ना बेड़ी ना तुलड़ा ना पाइए पर दूर मेरे ठाकुर पूरे सकते अडोल गुरु पूरा जे करे पाइए साचे अतोल रहो प्रभा रमंदर सोना तस्मे माणिक लाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों छड़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहार नाओ गुर सरसा गुर बोहित है गुर तीरथ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सरनावन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावने पूरे आस निराश नानक पूरा जे मिले क्यों घाट है गुणतास श्री राग महला पहला आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़िया मिलके कर कहानिया समरथ कंत किया साचे साहब साहब गुण औगुण सब सा करता सब को तेरा जोर एक शब्द विचारिये जा तू ता क्या होर रहो जाए पुछो सुहागणी तुसी रा बया किन्ने गुणी सह संतोख सिगारिया मिठा बोलनी पेरे रे सालो ता मिले जा गुर का शब्द सुनी केतिया तेरिया कुदरती केवड़ तेरी दात केते तेरे जी जंत सिवत करें दिन रात केते तेरे रूप रंग केते जात अजात सच मिले सच उपजय सच में सच समाय सुरत होए पत उगवे गुरबचनी भाओ खाय नारे सच्चा पात साहु आपे ले मिलाय श्री राग महला पहला
पले सरे जय उबरे हो मैं मुई करा डोट लगे फिर चाकरे सगर खावे साव कलब त्यागे बाद है सच्चा वे प्रभाव मन रे सत मिले पहो जाय पै बिंदर पो क्यों थी है गुरमुख शब्द समाये राव केता है अखण आखिए आखण तोट न होए मंगण वाले के चढ़े दाता को सोए जिसके जी प्राण है मन वस्या सुख होए जाग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए संजोगी मिले एक से वे जोगी उठ जाए जो तिथ पाना सोथी अव न करना जाए गुरमुख वस्तु विसाइए सच वखर सच रास जिन सच वणंजिया गुरु पूरे साबास नानक वस्त बछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले फन ताज को सिवते सिवत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जब एक पाए पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुरु पाईए मुक्त पदारत तेण राव उचो थान सुहावना उपर मैल मुरार सच करनी दे पाईए दर कर मैल प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रैवद कर्म कमाइए आसन दिशा होए क्यों गुर बंत्र कोटि छुटते सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछाणिए नद करे मल धोए बिन गुर मैल न उतरे बिन हर क्यों कर वास एको शब्द विचारिए अवर त्यागा आस नानक देख दिखाइए सद बलिहार जास श्री राग महला पहला त्रिक जीवन दोहा गणी मुठे दूजे पाए कलर केरे कंध जो एन सिगर ढह पाए बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख न जाए

पाया जाए। पूरे भाग सत संगत लहे सगुर पिटे जिसे आए, अंधन ना मेरा त्या दुख विखिया बिचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पाए। ओन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के अनुसार दुविधा मैल चुकाए न राख और तार। सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल भर नाल। हर निर्मल सदा सोना शब्द स्वर्ण हर राव, सच्चे शब्द मन मोहे प्रभा पहले मिलाए। अंधना मेरा त्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति प्रभु जावता बिन सगुर पूजना पाए। जिन कव पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तन आए, बिन नाम साब डूमणी दूजे पाए खोआए। ते बिन कड़ी न जीवते दुखी रहन विहाए, परम बुलाना अंदुला फिर फिर आवे जाए। नद करे प्रभु अपनी आप ले मिलाए, साब किस सुनदा विगता क्यों कृपाया जाए। पाप पाप कमाउंदे पापे बच बचाए, सुप्र नजर न आवे मन बुझ न पाए। जिस वाले सोई वेखे नानक गुरु पाए, सिर राग मल्ला तीजा बिन गुरु रोग न टुटे उमें पीड़ न जाए। गुरु प्रसाद मन से न मेरा समाए, गुर शब्द हर पाई है बिन शब्द परम पुलाए। मन रे निज कर वासा होए, राम नाम सहलास उपर आवन जान ना होए। राव हर एक दाता वर्तदा दूजा वर्ण कोए, सब सलाही मन वसे सहज ही सुख होए। सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तै देह।

प्रभ आप मिला वैसोए सतगुर हर प्रभु बुझिया गुर जेवड़े अवर ना कोय हो गुर सरनाई टैपवा कर दया मिले प्रभ सोए मन हटकने ना पाया कार्यो पाव थके सब कोय सहसणम कर रहे मन कोरे रंग ना होए कूड़ कड़कने ना पाए ओ जो जो भी जाए खावे सोए सब न तेरी हाल प्रभ सब जी तेरे तू रास प्रभ तो दुखाली को नहीं दर गुरमुखा नो साबास भिगपोज डुबदे कड़ला जन नानक की अरदास श्री राग महला चौथा नाम मिले मन तृप्ति है बिर नाम त्रिक जी वास कोई गुरमुख सज्जन दे मिले मैं दसे प्रभ गुणदास हों तिस बिटो चौं खनिए मैं नाम करे परगास मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम त्याए बिर नामे जीवन ना थी है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए राव नाम मुल्क रतन है पूरे सगुरु पास सगुरु सेवे लग्या खड़ रतन देवे प्रगास तन वड़ भागी आ जो आए मिले गुरु पास जिन्ना सगुरु पुरख न भेटो से भाग हिण वसुकाल ओए फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर विकराल न पास दुआस न पिटिए जने अंतर क्रोध चंडाल सगुरु पुरख अमृत सरवड़ भागी न वह आए उन जन्म जन्म के मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर के लिए बलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया मेरे सज्जन हर गुण गाय हीरे हीर मेल बेदिया रंग चलु लय नाय मेरे गोविंद गुण गावा त्रिवित मन होए अंतर प्यासर नाम के गुरु तो मिला बै सोय राव मन रंगोवट भाग्यो गुरु तो ठाकरे पसाओ गुरु नाम दृढ़ाए रंग सो हो सतगुर कह पल जाओ बिन सतगुर हर नाम न लभे इला कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास अंतरा ज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पयास बिन सतगुरु पेटे कंचन ना थी ए मन खलो बुढ़ा बेड़ी पास सतगुरु पवित्र नाम है कित विच चढ़िया जाए सतगुरु के बाणे जो चले विच पवित्र बैठा आए तन तन उड़ भागी नानका जिन सतगुरु लय मिलाए श्री राग महला चौथा हाँ